0: তোরও দুঃখে কাইলে টাউকো দুখনি কাইলে পেট দুখনি কে দুঃখে আও দুঃখে আও জানি এই বেলা পখালা লাগের হইরান হইন কাহ জানি হলা কে গর্নে কে নগর্নে কইলেই বিরামী ভয়ের কেই মেলো মিশে পাইলেন
1: বুয়া পীর নগলোস ঝট্টই সুবাস মেডিকো ফার্মামা গই আলম এই বেশি সরকো সেরা চোখ দেখি কার কার জানে বাদ আছে নি তিন জাম বরু
0: হুঞ্ছ বুয়ারি লো গই আলম সারে গারো
1: সুবাস মেডিকো ফার্মা বেশি শহর নগরপালিকা আটো সেরা
2: ইহা অনুভবী স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষণ গর্নুকা সাথেই উচিত পরামর্শ দিইন্ছ সবই খালে ঔষধিমা বিশেষ ছুটকো ব্যবস্থা ছ প্রোপাইটার সুভাষ দনাই সম্পর্ক মোবাইল নম্বর 9845664093
3: অর্জুন यार মিঠো অর্গানিক কফি কা পাইছ নি বেশি শহরকো মনাঙ্গে চৌতারামা রহেকো নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড বক্স বিস্ট্রোমা নি ইহা লমজুংকে অর্গানিক কফি র অরু প্রকারকা কফি পাইছ ওয়া কফি মাত্রই কি খানা খাজা পনি ছ সকালি খানা খাজা সেট র রমাইলো ফুল হাউস সমেত ছ সাথী ভাই ভেটঘাটকা লাগি একদমই উপযুক্ত ঠাউ হো
4: এস নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড ওয়ার্ক বিস্ট্রোমা লমজুংকে অর্গানিক কফি বিভিন্ন প্রকারকা কফি থকালি খানা খাজা সেট পাইছ साथै फुल हाउस पनि सञ्चालनमा रहेको छ
5: प्रोपाइटर टेकजङ गुरुङ नमस्ते थकाली किचन एन्ड बब्स बिस्ट्रो बेसी सहर नगरपालिका साथ मनाङे चौतारा सम्पर्क फोन नम्बर 0663520903 मोबाइल नम्बर 9841680025
6: के तपाईँ भरपर्दो आयुर्वेद सेवाको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने चितवनको नमुना आयुर्वेद औषधालय तपाईँहरूकै सेवामा समर्पित छ यहाँ उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक औषधिहरू उपलब्ध हुनुका साथै अन्य प्रविधिबाट ठिक नभएका नयाँ तथा पुराना रोगहरू बाघ दम ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर धातु किनास जन्डिस पाल्स पत्थरी फिस्टुला प्यारालाइसिस मधुमेह जाँड रक्सी छुटाउने औषधि मोटोपन घटाउने बढाउने ब्लड प्रेसर यौन रोग छातीको दाग आदिको सफल उपचार गरिन्छ दैनिक दक्ष तथा अनुभवी विशेष ज्ञहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841939647 र 9811906010 नमुना आयुर्वेद औषधालय राप्ती नगरपालिका 5 भण्डारा स्कुल रोड चितवन र भरतपुर महानगरपालिका 12 मालपोत कस्तुरी टोल चितवन
7: तुलाई फर्किने गरी तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टरमा पुरै रात हालेछन् बुढाले देखाउनलाई होला नि तुलै थर्किने गरी हाँसेका हुन त हाम्रो बाले नि तालबाराहीमै राख्नु भयो के अरे दाँत अहिलेसम्म भोलियै छन् लोकल कुखुराको हड्डी त चपाउँछन् बुढाले
1: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्रालीमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त दन्त सर्जन डाक्टर अरुण कुमार शाहद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू दाँत सफा गर्ने टल्काउने र सामान्य शल्यक्रिया बच्चा तथा वृद्ध वृद्धाको दाँतको विशेष उपचार भर्ती हुनेहरूका लागि दाँत कलरको सिसा रेजिन कम्पोजिट भर्ने नदुखाइकन दाँत निकाल्ने दाँतको एक्सरे गर्ने नमिलेका बाङ्गाटिङ्गा दाँत सिधा गरी मिलाउने दाँतमा सिसा सिमेन्ट र चाँदी भर्ने फिक्स दाँत राख्ने साथै दाँत झिक्ने राख्ने र बनाउने मुख गनाउने दाँतको हर्ष घिजाबाट रगत आउने सुन्निने पिप आउने रोगको विशेष उपचार गरिन्छ
7: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्राली बेसी सहर नगरपालिका साथ भीमसेन स्थान लमजुङ प्रोपाइटर ज्ञानु केसी सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841632004 र 9811920981
8: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज

0: দুঃখে কাইলে টাউকো দুখ্নি কাইলে পেট দুখ্নি যে দুঃখে আও দুঃখে আও ঝন এই বেলা পখালা লাগের হইরান হইন কাহ জানি হলা কি গর্নে কি নগর্নে কইলেই বিরামী ভয়ের কেই মেলো মিশে পাইলেন।
1: বুয়া চিন্তা না করলোস, ঝটতেই সুভাষ মেডিকো ফার্মামা গই আলম। এই বিসি সরকো সেরা চোখ দেখি কার কার জানে বাদ আছে নি তিনি যাম বরু।
0: হুঞ্ছ বুয়ারি লো গই আলম সারে গারো।
1: সুভাষ মেডিকো ফার্মা বিচিতহর নগরপালিকা আট সেরা
2: यहाँ अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै उचित परामर्श दिइन्छ। सबै खाले औषधिमा विशेष छुटको व्यवस्था छ। प्रोपाइटर सुभाष दनाई, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98465640093।
3: दाइ पैसा त तन्ने कमाएर ल्याउने भयो क्यारे?
4: विदेशमा पैसा रुखमा फल्ने हो र? अब म त विदेश नजाने गरी फर्किए पनि बढ्ने।
3: अब के गर्नुहुन्छ त दाइ?
4: काम त कति कति नि जाँगर हुनु पर्यो नि बहिनी, जाँगर। हाम्रै बेसी सहरको सेरा ओह्रालोको सुजल सप्लायर्सबाट कुखुराको चल्ला ल्याउँछु, पाल्छु। दाना पनि राम्रो र सस्तोमा पाइँदो रहेछ। पालेको कुखुरा पनि त्यही लगेर बिक्री गर्छु।
3: आहा दाई, कस्तो कायदाको कुरा गर्नुभयो। म त त्यही बाटोको कुखुराको मासु दिनदिनै ल्याउँथे, यसको कुरा यादै भएन।

0: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज।
1: के भयो? के भयो? के भयो? के भयो? के भयो?